0: सीख ले रहे हैं.
1: पेशेंस इज द की.
0: चले एक छोटे से ब्रेक की तरफ चलते हैं. इस कहानी के बाद हम अभी और बात करते रहेंगे संजीव जी के साथ. उनका नंबर डायरेक्ट 416-843-7600 और स्टूडियो में कॉल करने का नंबर 416-593-0055.

0: हर घर कुछ कहता है।
1: घर की बात संजीव मनोचा के साथ,
0: ब्रॉट टू यू बाय माय रियल को द रियल एस्टेट कंपनी, एवरी थर्सडे 6 PM ओनली ऑन फिल्मी नुक्कड़।
2: Well, आज की कहानी का शीर्षक रहा जब चाय पड़ी हमें महंगी। वैसे और इसे रियल स्टेट से हम कनेक्ट करके ये देख सकते हैं, जब इंतजार करना और करते चले जाना, इंतजार में बैठ जाना, निष्क्रिय हो जाना हमें पड़ता है महंगा।
1: महंगा, बिल्कुल,
2: जी बिल्कुल। स्टूडियो का नंबर 416-593-0055 फॉर योर क्वेश्चंस, एंड अगर आपके कुछ कमेंट्स हैं, कुछ बात करना चाहते हैं आप, साथ में अगर आप डायरेक्ट संजीव जी से बात करना चाहते हैं तो 416-843-7600 उनका नंबर है। अच्छा संजीव जी, हमने जो कहानी पे बात करी, आपने मार्केट इस वक्त जो एनालिसिस है वो दिया कि आपने ये बताया शॉर्ट में कि सेल प्राइस कम हो रही है, बढ़ रही है,
1: प्राइस कम हो रही है, बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन है,
2: और जिसमें कि डिमांड धीरे धीरे बढ़ रही है क्योंकि प्राइस कम है तो डिमांड बढ़ेगी, और डिमांड बढ़ेगी तो ग्रेजुअली इट्स एन इंडिकेटर कि डाउन द लाइन सूनर और लेटर, विच कैन बी वेरी सून एज पर यू, ग्रेजुअली, लेकिन जल्दी आ जाएगा वो, ग्रेजुअली
1: विद इन दिस ईयर
2: आ जाएगा, और हो सकता है समझ में ही हम देख लें प्राइस बढ़ जाएंगे। तो इससे ये इंडिकेशन जरूर है, अगर आप घर बेचने खरीदने का सोच रहे हैं तो दिस इज द राइट टाइम। अब भी बॉटम है, वो जो लोग बैठे हैं ना बॉटम, और

0: बॉटम
1: हाँ,
0: और बॉटम
1: नहीं हो सकता है अभी और बॉटम आ जाए, लेकिन बात यह है कि अब काफी बॉटम आ गई है और ये जो इंडिकेटर हैं ये अर्ली इंडिकेटर्स हैं, क्योंकि देखें आप ये समझें कि मार्केट वी शेप में है।
0: हाँ
1: ठीक है, अभी हम अगर लेफ्ट वाली साइड देखें वी की तो वो नीचे नीचे जा रही है। नाउ दिस इज क्लोज टू, बिल्कुल जो एज है उसका उसके क्लोज है। हो सकता है मार्केट अभी और नीचे जाए, हो भी सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन जैसे जैसे डिमांड बढ़ती जाएगी तो वैसे ही एकदम से वो पेंट अप डिमांड जो अभी क्रिएट हो रही है पिछले 2-3 साल से, वो सारे के सारे बायर्स बाहर आएंगे। ठीक है, और एकदम से फिर होता क्या है कि और यही चीज हमने देखी कोविड के दौरान भी,
0: आपने बोला कॉन्डोमिनियम्स की तो इन्वेंट्री अच्छी,
1: कॉन्डोमिनियम्स की इन्वेंट्री अभी है लेकिन घरों की इन्वेंट्री कम हो रही है। जी बिल्कुल बिल्कुल, घरों की इन्वेंट्री एज कम्पेयर टू लास्ट ईयर ईयर ऑन ईयर ये कम हो रही है। और आपको एक बड़ा इंटरेस्टिंग चीज बताऊं, जब कोविड का टाइम था, ठीक है, आज से 5 साल पहले जब कोविड का टाइम था, जब इमरजेंसी लगी थी, हेल्थ इमरजेंसी 17 मार्च 2020,
0: मैं इमरजेंसी से डर जाती हूँ पर ठीक है, हेल्थ इमरजेंसी बोले तो सही
1: है। ठीक है, तो उस टाइम पे क्या हुआ था कि लोगों ने कहा कि अभी प्राइसेस और डाउन जाएंगे। अच्छा, फिर सीएमएचसी के जो सीईओ थे उन्होंने ये प्रेडिक्ट किया कि प्राइसेस ऑलमोस्ट 18% 20% कम जाएंगे, मार्केट कम होगी, तो बहुत सारे लोग बैठ गए। लेकिन जो लोग उस टाइम पे जो कूद गए, वो 6 हफ्ते का एक टाइम पीरियड आया था, ऐसा ऐसी विंडो थी 6 वीक्स की, जो उस टाइम पे कूद गए, उसके बाद में अचानक से मार्केट ने ऐसा उछाल देखा कि वो सारी प्रेडिक्शंस उनकी फेल हो गई और सीएमएचसी के सीईओ को खुद को रिजाइन देना पड़ा।
0: हाँ,
1: क्योंकि उन्होंने गलत प्रेडिक्शन
0: कर दी।
1: तो मार्केट को बीट नहीं किया जा सकता। हाँ, आप मार्केट के हिसाब से देखो, जितना भी आपका सॉल्यूशन आपके परिस्थिति के हिसाब से, जैसे आपने कहा था, तो उस हिसाब से आप मार्केट में कूदो, उस हिसाब से आप डिसीजन लो, वो आपके लिए बेटर है। और लॉन्ग टर्म में तो वैसे भी रियल एस्टेट बेटर है। कभी भी लॉन्ग टर्म में आप कभी भी नहीं देखोगे कि लॉन्ग टर्म में आज से 5 साल 10 साल का अगर आप उठा के देखो हिस्ट्री, या पिछले 50 साल की भी उठा के देखो, तो रियल एस्टेट प्राइसेस हैज नेवर कम डाउन एज सच, हमेशा ग्राफ ऊपर ही गया आपका। ठीक है, वो स्पाइक्स आते हैं, फिर डाउन होता है, फिर जाते हैं, फिर वो हर उसमें होता है, बट ओवरऑल इट ऑलवेज गोज अप। एंड देन अगेन, इफ यू आर अ फर्स्ट टाइम बायर और इफ यू आर लुकिंग फॉर अ हाउस अपने रहने के लिए,
0: तो रहने के लिए तो आपके लिए ही है ना, वो इन्वेस्टमेंट तो है ही नहीं फिर।
1: जी बिल्कुल, बिल्कुल,
0: उसकी तो कोई कीमत वाली बात ही नहीं, जो आपका बजट है वो आपका घर है बस, वो सबसे अच्छा है, सबसे महंगा है।
1: और आप ये देखिए, हमारे जो हम जिस बैकग्राउंड से आते हैं, हम साउथ एशियन लोग, हम इंडियन लोग, हमारी माएँ सबसे पहला सबक यही देती हैं बच्चों को,
0: अपना घर बनाना,
1: अपना घर जरूर बनाइयो, भले से एक कमरे का हो, भले से छोटा सा हो।
0: आपने कितने मुस्कान के साथ इतने प्यार से कहा अपना घर जरूर बनाइयो, मुझे ना एकदम उसमें वो बनाइयो में एकदम से वही डायलॉग याद आता कि अपना घर जरूर बनाइयो।
1: बहुत बहुत मेरे मदर भी, मतलब जब हम नए नए आए थे तो जब हम उनको फोन करते थे तो सबसे पहले उनका यही सवाल होता था। आज से 25 साल पहले उनको फोन किया, उन्होंने पूछा, अच्छा वहाँ पे संजीव तुमने घर ले लिया? मैंने कहा नहीं मम्मी, यहाँ तो बड़ा महंगा है अभी हमारे हिसाब से, चाहे छोटा सा ले ले, चाहे 50 गज का ले ले,
0: अपना ले लो। हाँ।
1: तो वो माएं हमेशा, उन माओं का हमेशा ये इमोशन रहता ही है अपने बच्चों के लिए।
0: हाँ।
1: कि वो घर बनाना है, वही चीज हमारी भी रहती है अपने बच्चों के लिए।
0: हाँ।
1: तो जब आपने जिस घर में रहना है तो फिर आप ये नहीं देखते कि किस हिसाब से मार्केट आगे पीछे जा रही है, तब आप अपने,
0: जब रहना है और आपकी परिस्थिति में उसे खरीदने के लिए आप ओके हैं तो आप ले लें,
1: तो आप ले लें।
0: और मैं यहाँ पे फिर एक चीज़ बताना चाहूँगी कि कई बार हम जो ये कन्फ्यूज होते हैं, अक्सर विद फर्स्ट टाइम होम बायर्स ये होता ही होता है कि वेदर मेरे पास जितना भी फंड है इस समय घर के लिए जो मैंने जोड़ा है, ये एनफ है या नहीं, मुझे अभी लेना चाहिए या नहीं, या बहुत सारी उनकी रिक्वायरमेंट्स होते हैं, एक सपने अलग चल रहे होते हैं, बजट अलग चल रहा होता है, नीड्स अलग चल रही होती हैं, और वो आपस में उन सबका सामंजस्य ठीक बैठ रहा है नहीं बैठ रहा, वो कन्फ्यूजन्स होते हैं।
1: तो उसके लिए मैं ये कहूँगा कि सर जो तेरा चक्राए या दिल डूबा जाए रियल एस्टेट के लिए।
0: हाँ, जी,
1: आजा प्यारे पास हमारे, हमारा काहे घबराए, और हमारा नंबर है 416-843-7600, 416-843-7600।
0: बिल्कुल, बहुत ही अच्छी बात कही है कि अगर आपका सर चकरा रहा है कि क्या किया जाए तो आप प्लीज संजीव मनोचा जी से जरूर मिलें। माय रियल को जो टैगलाइन है वो भी यही है, माय प्रॉपर्टी माय चॉइस माई रियल को, तो इस टैगलाइन यूं ही नहीं बनी, देयर इज अ रीजन बिहाइंड दिस टैगलाइन। अच्छा मुझे ये बताएं, आप कौन सी मदर्स डे की डील बताने वाले थे मेरे लिस्टनर्स के लिए?
1: जी बिल्कुल बिल्कुल, तो मदर्स डे के लिए देखें, सेलर्स का मेरा एक सेलर एडवांटेज प्रोग्राम है जिसमें आप अक्सर कहते हैं कि लिस्टिंग कमीशन स्टार्ट्स फ्रॉम 0.99%।
0: अच्छा,
1: लेकिन आज मदर्स डे पे मैं ये कहूँगा कि इट इज नॉट स्टार्ट्स फ्रॉम, मदर्स डे के लिए इट इज फ्लैट 0.99% लिस्टिंग कमीशन।
0: वाओ, तो अगर आप घर अपना लिस्ट कर रहे हैं
1: जी,
0: तो लिस्टिंग कमीशन फ्लैट 0.99% है, मतलब नो इफ्स एंड बट्स, नो कंडीशंस। अगर आप संजीव जी के थ्रू अपना घर लिस्ट कर रहे हैं तो फ्लैट 0.99% लिस्टिंग कमीशन है और आप बहुत सारी यहाँ पे
1: बचत कर सकते हैं, लेकिन ये लिमिटेड टाइम के लिए।
0: अच्छा,
1: क्योंकि मदर्स डे भी हमेशा नहीं रहता।
0: हाँ ठीक है,
1: ये लिमिटेड टाइम के लिए, और आप मेरे को कॉल कर सकते हैं। और बायर्स के लिए, मैं खुद से आपको ये चीज बता रहा हूँ, बायर्स के लिए, क्योंकि बायर्स कहेंगे हमारे लिए क्या,
0: राइट?
1: तो बायर्स के लिए है कि मदर्स डे की प्रमोशन, अगर आप मेरे से घर खरीद रहे हैं तो 25% ऑफ माय कमीशन कम्स टू यू एज योर अर्निंग।
0: That's a huge amount.
1: Yeah. As a team partner.
0: Chale, to 25% of Sanjeev Ji's commission that comes to you as a team partner on Mother's Day special hai ya, if you are buying through him, ya aap list karte hain unke zariye, to 0.99 flat commission, listing commission rahega. Aap unko call kar sakte hain at 416-843-7600. Sanjeev Ji, jaate jaate kuch listings announce karenge?
1: Ji, bilkul bilkul, jaate jaate main bahut hi badhiya listing apne लिसनर्स के लिए लेके आया हूँ। ब्रैम्पटन में पावर ऑफ सेल प्रॉपर्टी, आजकल पावर ऑफ सेल काफ़ी हैं और बहुत लोग पावर ऑफ सेल की वेट करते रहते हैं, तो पावर ऑफ सेल प्रॉपर्टी सेमी रिटैच, 3 बेडरूम, 4 वॉशरूम, फिनिश्ड बेसमेंट है, सिंगल कार गैराज है, लॉट साइज बहुत बड़ा है, 103 फीट का इसका डेप्थ है। आप मुझे कॉल कर सकते हैं ज़्यादा जानकारी के लिए, और प्राइस बहुत ही उम्दा है, इट्स लाइक आई मीन इन 800s रेंज, और लोअर 800s रेंज। मेरा नंबर है 416-843-7600, और ये पावर ऑफ सेल प्रॉपर्टी है। इसके अलावा मैं ये बताना चाहूँगा कि एक प्रॉपर्टी मेरे पास में स्कारबरो में है, ठीक है, स्कारबरो में, अगेन इट्स अ सेमी डिटैच हाउस, 3 बेडरूम 4 वॉशरूम, बेसमेंट में अपार्टमेंट बना हुआ है सेपरेट एंट्रेंस के साथ में।
0: Nice.
1: तो रेंटल पोटेंशियल है, या फिर इनलॉ सूट है, वहाँ पे इनलॉज रह सकते हैं। लोग पता नहीं क्यों कहते हैं इनलॉ सूट।
0: हाँ, मुझे भी कई बार लगता है हम लोग हो तो हम सोचे अपने मम्मी पापा को तो ऊपर रखेंगे, हम नीचे रह लेंगे।
1: लेकिन यहाँ पे एक फैशन बना हुआ है, चलो ठीक है,
0: ठीक है।
1: तो उसके बारे में हम कभी फिर बात करेंगे। तो जी, ये प्रॉपर्टी भी बहुत खूबसूरत है, और लेस देन 20-25 ईयर्स ओल्ड प्रॉपर्टी है, ये बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है, सिंगल कार का गैराज है इसमें। ज़्यादा जानकारी के लिए आप मुझे कॉल करें, मैं आपको प्रॉपर्टी दिखाऊंगा, आपका प्राइवेट टूर लगाऊंगा। मेरा नंबर है 416-843-7600, 416-843-7600। और इसके अलावा एक मेरे पास में कमर्शियल प्रॉपर्टी आने वाली है लीज़ के लिए।
0: अच्छा,
1: बहुत ही जी, आज ही इनफैक्ट वो पेपर साइन हो रहे हैं, कील एंड फिंच के एरिया में ब्यूटिफुल प्रॉपर्टी है, फर्निश्ड ऑफिस है वो, उसमें केबिन्स बने हुए हैं और 2 कार की पार्किंग भी है, रेंट बहुत ही वाजिब है उसका, 902 स्क्वायर फीट की प्रॉपर्टी है वो। और आपका अगर आप मेडिकल प्रोफेशन में हैं, मान लीजिए फिजियोथेरेपिस्ट हैं, शिरोपोडिस्ट हैं, कैरोप्रैक्टर हैं, या आप कोई और प्रोफेशन में हैं, मॉर्गेज है, इमिग्रेशन का काम है, आपके लिए परफेक्ट प्रॉपर्टी है, बिल्कुल सबवे के ऊपर है वो प्रॉपर्टी, और साथ में मैंने कहा 2 कार की पार्किंग साथ में आपको मिलेगी उसमें। आप मुझे कॉल कर सकते हैं 416-843-7600, आई एम हियर टू हेल्प यू।
0: परफेक्ट, 416-843-7600 संजीव जी का नंबर है फ्रॉम माय रियल को, एक बार कॉल करें। जितनी अभी प्रॉपर्टीज आपने सुनी है, इनको खरीदना है तो याद रखें, इस वक्त मदर्स डे स्पेशल के तहत आपको 25% कमीशन एज अ पार्टनर भी मिलेगा। 416-843-7600।

0: advertise with Filmi Nukkad on CMR at 5 p.m. Your prime drive time show. Call Swati at 647-830-5042. That's 647-830-5042. It's the free time. फायदा उठाएं स्प्रिंग स्पेशल मॉर्गेज रेट्स एंड एक्स्ट्रा प्रमोशन का विद अमित खुराना. 5 इयर्स फिक्स्ड 4.14%, 3 इयर्स फिक्स्ड 4.19%, 5 इयर्स वेरिएबल 3.55%, प्लस कैशबैक फ्रॉम बैंक एंड स्पेशल गिफ्ट फ्रॉम अमित खुराना अप टू $1,500. टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई. कॉल अमित 6473412785, 6473412785 और विजिट amitkhurana.com.
1: लीसा की याद नहीं आई तुझे जसी? जसी को छोड़िए, क्योंकि लीसास कॉस्मेटिक्स लाए हैं स्प्रिंग वेयरहाउस सेल खास आपके लिए. परफ्यूम, स्किन केयर, मेकअप, हेयर केयर, डिजाइनर सनग्लासेस, चॉकलेट्स और भी बहुत कुछ विद मेगा सेविंग्स अप टू 80% ऑफ. धुरंधर डील्स ऑन ऑल योर फेवरेट वर्ल्ड फेमस ब्रांड्स जैसे टॉम फोर्ड, वर्साचे, अरमानी, हजारो एंड मोर. आपको आना है 135 कॉमर्स वैली ड्राइव, ईस्ट मार्कम, हाईवे 404 और 407 के बेहद करीब एंड क्लोज टू 401. सेल चलेगी अप्रैल 18 से मई 10 तक. परफेक्ट फॉर मदर्स डे गिफ्टिंग. तो ज्यादा स्वैग एट कम प्राइस सिर्फ लीसाज वेयरहाउस सेल पर. विजिट लीसाज कॉस्मेटिक्स.com.

0: राजधानी स्वीट्स, ये सचमुच है स्वाद की राजधानी। खुद आइए, दोस्तों को भी लाइए।
1: ये है राजधानी, राजधानी, राजधानी।
2: राजधानी स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट, द लार्जेस्ट इंडियन वेजिटेरियन रेस्टोरेंट चेन इन कनाडा। फाइंड आउट मोर एट rajdhanisweets.ca।
3: क्या आपके होम एंड ऑटो इंश्योरेंस के रिन्यूअल का टाइम आ गया है? क्या आप गुड रेट्स में एक सही कवरेज ढूंढ रहे हैं? तो कॉल सिमरन बेंस फ्रॉम ऑलस्टेट की बीसी सागर साउथ एजेंसी एट 647-453-5353। दो कारों और एक घर की इंश्योरेंस पर $2,029 तक की सेविंग्स कर सकते हैं। सिमरन बेंस एंड ऑलस्टेट के साथ आप हैं इन गुड हैंड्स। कॉल सिमरन बेंस एट 647-453-5353, 647-453-5353। And yes, even for one car and a home, $400 to $500 की annual savings possible. Call Simran Benz 647-453-5353.
4: नजर बदलो, नजारे बदल जाएंगे। आप भी अपनी जिंदगी की खूबसूरती को देखें स्पेक्स एक्सप्रेस के साथ, जहां है वर्ल्ड क्लास क्वालिटी डिजाइनर सनग्लासेस, आई ग्लास फ्रेम्स एंड लार्ज सिलेक्शन ऑफ कॉन्टैक्ट लेंसेज।
5: गेट सिलेक्टेड फ्रेम रेगुलर सिंगल विजन लेंसेज फॉर जस्ट $129। 35 रेजोल्यूशन ड्राइव, ब्रैम्पटन इन वॉलमार्ट प्लाजा। कॉल 905-460-8888, दैट्स 905-460-8888।
4: सर्विंग फ्रॉम टू लोकेशंस, बेस्ट सर्विस बेस्ट प्राइस, स्पेक्स एक्सप्रेस के साथ।
3: You are tuned into CMR at 5 p.m. with RJ Swati on Filmy Nukkad. It's the free time.
6: Hi,

0: ऐसी वाली सिचुएशन नहीं जैसे कि गाना चल रहा था। ये अक्सर नहीं पता होता कि ये महज लाइक वाइक वाली बात हो रही है हमारे मन में या लव शव का सीन कुछ उपज रहा है, बोले तो जस्ट दैट क्रश व्रश है जो समय के साथ या तो बढ़ता नहीं या फेड होता चला जाता है, या कुछ ऐसे की शुरुआत है जिसके लिए सात समंदर पार भी आया जाया जा सकता है, सात जन्मों का प्यार है और इंतजार किया जा सकता है, यू नो। पर अ डे लाइक टुडे विच इज इंटरनेशनल टेल योर क्रश डे डेफिनेटली रिमाइंड्स कि इवन इफ इट इज जस्ट अ क्रश तो आज भी नहीं कह पाओगे बंधु तो भाई बाद में पछताओगे, जब चिड़िया या चिड़ा चुपके ले जाएगा खेत तब आप बस सोचते रह जाओगे कि सोचते क्यों रह गए भाई। आई एम श्योर बहुत से लोग अभी भी इतने साल बाद भी ये सोचते जरूर होंगे कि काश तब कह दिया होता, एक बार तो कहा होता फिर देखा जाता। और ऐसा भी है कि बहुत सारे लोग ये सोचते होंगे काश तब चुप रह गए होते तो ये दिन ना देखना पड़ता। वेल आई गेस जो होना होता है ना वैसे ही हमारी बुद्धि भी हो जाती है। पर फिर भी गब्बर सिंह ये कहकर गया कि जो डर गया वो मर गया। सो to your crush today, don't hesitate and convey whatever your heart wishes to say.
1: मैं सीधे साधे ढंग से

0: For any information, call Sarab Sabarwal 647-864-8844. That's 647-864-8844.
1: Or visit teamsabarwal.com.
2: Your search ends here.
3: At Wayne's Auto Group, आप हम पर rely कर सकते हैं for everything automotive. चाहे हो daily commute या weekend scape, हमारा promise will always remain the same. हर journey को बनाए खास. Wayne's Auto Group हमेशा आपके साथ. Over 1400 dedicated associates जो बोलते हैं आपकी language, offering 9 brands across 15 dealerships, from first drive to lifetime care. Wayne's Auto Group is always there. आज ही visit करें waynesautogroup.com.
4: मेरे रेगुलर किराया देने से प्रॉपर्टी मेरे लैंडलॉर्ड की मॉर्गेज फ्री हुई
5: और मेरे अपने घर का सपना वो सपना ही रह गया।
6: अब वक्त है अपने घर का सपना साकार करने का। मैं हूँ संजीव मनोचा, ब्रोकर ऑफ रेकर्ड माई रियल को, द रियल एस्टेट कंपनी। पिछले 20 सालों में मैंने सैकड़ों फर्स्ट टाइम बायर्स को उनके बजट और जरूरत के हिसाब से घर खरीदने में हेल्प की है। अब बारी आपकी। कॉल मी नाउ फॉर अ फ्री कंसल्टेशन एंड स्मार्ट बायर्स रिवॉर्ड प्रोग्राम एट 416-843-7600।
4: दैट्स 416-843-7600 और विजिट माई रियल को .com.
7: Yeah, he had right choice, Canada. CMR.
4: CMR at 5 p.m. Play karna to banta hai.
8: Oh, first sight wala love kara gayi hoy. Oh, first sight.

और कमाल की बात पता क्या है, और भी लोग खड़े थे वहां पे, पर उसने मुझसे आके पूछा, एक्सक्यूज मी, इज इट 12/25 मॉडल टाउन इन अ मार्केट? सबकी शक्ल देखने वाली थी, जल ककड़ू कहीं के।

0: क्या आपके होम एंड ऑटो इंश्योरेंस के रिन्यूअल का टाइम आ गया है? क्या आप गुड रेट्स में एक सही कवरेज ढूंढ रहे हैं? तो कॉल सिमरन बेंस फ्रॉम ऑलस्टेट की बीसी सागर साउथ एजेंसी एट 6474535353। दो कारों और एक घर की इंश्योरेंस पर $2,029 तक की सेविंग्स कर सकते हैं। सिमरन बेंस एंड ऑलस्टेट के साथ आप हैं इन गुड हैंड्स। कॉल सिमरन बेंस एट 6474535353 6474535353. And yes, even for one car and a home, $400 to $500 की annual savings possible. Call Simran Benz 6474535353.
1: लीसा की याद नहीं आई तुझे जस्सी? जस्सी को छोड़िए, क्योंकि लीसा कॉस्मेटिक्स लाए हैं स्प्रिंग वेयरहाउस सेल खास आपके लिए। परफ्यूम, स्किन केयर, मेकअप, हेयर केयर, डिजाइनर सनग्लासेस, चॉकलेट्स और भी बहुत कुछ विद मेगा सेविंग्स अप टू 80% ऑफ। धुरंधर डील्स ऑन ऑल योर फेवरेट वर्ल्ड फेमस ब्रांड्स जैसे टॉम फोर्ड, वर्साचे, अरमानी, हजारो एंड मोर। आपको आना है 135 कॉमर्स वैली ड्राइव, ईस्ट मार्कम, हाईवे 404 और 407 के बेहद करीब एंड क्लोज टू 401। सेल चलेगी अप्रैल 18 से मई 10 तक, परफेक्ट फॉर मदर्स डे गिफ्टिंग। तो ज्यादा स्वैग एट कम प्राइस सिर्फ लीसाज वेयरहाउस सेल पर। विजिट lisascosmetics.com।
0: ब्रांड नेम कॉस्मेटिक्स, हेयर केयर, हेल्थ एंड ब्यूटी प्रोडक्ट्स, फाइन चॉकलेट्स, डिजाइनर सनग्लासेस, फ्रेग्रेंसेस खरीदना चाहते हैं अपने लिए या अपनों के लिए, पर प्राइस टैग देखकर खुद को बस समझा लेते हैं, तो भाई लीजास कॉस्मेटिक्स वेयरहाउस सेल जरूर जाएं। सभी ब्रांड्स मिलेंगी एंड 80% तक की सेविंग्स भी होगी, यानी भारी बचत और ब्रांड्स दोनों बातें हमारी पसंद की। मदर्स डे के लिए तो गिफ्ट्स की परफेक्ट वैरायटी मिलेगी। बट यस, इट्स ओनली ऑन फ्राइडे, सैटरडे, संडे एंड मंडे। जाएं एट 135 कॉमर्स वैली ड्राइव, ईस्ट मार्कम, हाईवे 7 एंड 404 का इंटरसेक्शन, और विजिट lisascosmetics.com। To advertise with Filmi Nukkad on CMR at 5 p.m. your prime drive time show, call Swati at 647-830-5042. That's 647-830-5042. It's the free time.
2: Keh doon tumhe,
0: haan,
2: ya chup rahoon,
0: na,
2: दिल में मेरे आज क्या है?
0: क्या है?
2: कह

दैट वॉज फ्रॉम दीवार, जिसका एक डायलॉग बहुत फेमस है आज तक, कि मेरे पास बंगला है, गाड़ी है, पैसा है, तुम्हारे पास क्या है? एंड देन कम्स द बेस्ट ओवर फीलिंग वन कैन हैव, मेरे पास माँ है. वेल, मदर्स डे की बात यहाँ पे नहीं हो रही है, वो तो हमेशा हमारे दिमाग में रहती है, यू नो, शायद इसलिए भी ये डायलॉग आज तक सबके दिलों में है. बट ऑल्सो टुडे इज मदर ओशियन डे. अच्छा, मैं पढ़ रही थी ना मदर ओशियन डे, तो सबसे पहले पता है क्या ख्याल मन में आया, वैसे तो बहुत सारे ख्याल आए, पर पहले ये आया कि मैंने तो हमेशा धरती को, देश को या नदियों को माँ के रूप में देखा है, मतलब प्रकृति की बात करें तो. समुद्र को कभी नहीं देखा, क्योंकि शायद एक तो मात्रा में हम समुद्र बह रहा है बोलते हैं, यू नो, पुल्लिंग आ जाता है हिंदी में, दूसरा उसकी जो अथाह गहराई है, ऊंची उठती लहरें हैं, विशालकाय रूप होता है, मुझे लगता है वो इतनी पीसफुल फीलिंग नहीं दे पाता जो एक माँ के साथ आपको एक कामनेस वाली फीलिंग आती है, शायद इसलिए, पता नहीं. पर फिर ये भी सोचा कि सोचो अगर ओशियन एक सच में माँ होता, होती, होता, फिल्मी मदर ऐसे कह सकते हैं, तो क्या होता? तो वो कहता, मेरे पास मछलियां हैं, नमक है, दुनिया का 70% पानी है, तुम्हारे पास क्या है? वेल, दिस डे इज ऑल अबाउट केयरिंग फॉर ओशियन. फिर चाहे आप इसे माँ मानते हो, ना मानते हो, या सिर्फ प्रकृति का हिस्सा ही मानते हो, सिर्फ वेकेशंस और पिक्स के लिए ही नहीं, ये सच में हमारे लिए जरूरी है. सो ऑन दिस, बेशक मुहावरा कहते हैं कि भाई बहती गंगा में हाथ धो लो, बट टाइम इज गंदा, तो बहते समुद्र को भी ना करो. और इसी नोट पे दिस इज स्वाति साइनिंग ऑफ फॉर नाउ, मिलते हैं जल्दी ही, तब तक लव एंड स्माइल फ्रॉम मी टू यू.

0: न्यूज के लिए हमें दिया है टीम भट्टी रियल स्टेट फॉर ऑल योर रियल स्टेट नीड्स कॉल तलहा भट्टी 6472957861 6472957861।
1: पेश खिदमत है आज की अहम खबरें। डी जी आई एस पी आर अहमद शरीफ चौधरी ने कहा है कि जिस तरह सऊदी अरब के लिए थ्रेट हमारे लिए खतरा है, ऐसे ही सऊदी अरब को भी पाकिस्तान की सलामती अजीज है। उनका कहना था कि मार्का हक में जो भारत ने देखा वो हमारी मजमुई पावर पोटेंशियल का 10-15% ही था। इस मौके पर पाक फौज की डिप्टी चीफ ऑफ एयर स्टाफ ने दावा किया कि मार्का हक में भारत के 4 राफेल तैयारों समेत 8 तैयारे मार गिराए गए। दूसरी जानिब भारतीय एयर मार्शल उदेश कुमार भारती ने दावा किया कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान के 11 एयरफील्ड्स को नुकसान पहुंचाया गया जबकि 13 तैयारे मार गिराए गए। ईरानी वजारत खारजे के तर्जुमान इस्माइल बकाई ने कहा है कि पाकिस्तान के जरिए आने वाले पैगामात का जायजा ले रहे हैं और अमरीका को अब तक कोई जवाब नहीं दिया। उधर पाकिस्तान के दफ्तर खारजे के तर्जुमान ने कहा है कि हमें तवक्को है कि ईरान और अमरीका के दरमियान माहिदा देर के बजाय जल्द हो जाएगा। ईरान के सदर मसूद पेजिशकियान का कहना है कि उन्होंने सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनेई से मुलाकात की है जो 2.5 घंटे तक जारी रही। उधर ईरान के नए रहनुमा के मुशीर मोहसिन रजाई ने कहा है कि ईरान जौहरी मामलात पर किसी से मुज़ाकरात नहीं करेगा और आबनाए हुरमुस पर कंट्रोल ईरान ही के पास रहना चाहिए। ईरान ने जनूबी कोरिया के एक जहाज़ पर होने वाले धमाके में किसी भी किस्म से मुलव्वस होने से इनकार किया है। मगरबी बंगाल की वज़ीर आलम ममता बनर्जी के मुस्ताफ़ी होने से इनकार के बाद रियासत के गवर्नर ने रियासती असम्बली तहलील कर दी। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान पहला टेस्ट कल से ढाका में शुरू होगा और आज रात से गैस की कीमत में 6 सेंट फी लीटर कमी हो जाने का इम्कान। इन खबरों की तफसील आप सुन सकेंगे रात 8 बजे।
2: खास खास खबरें जुबैर दिन साहब के लिए पेश किया करते हैं। स्टूडियोज में रबता के नंबर 4165930003। गैलेक्सी इंटरनेट एक्सचेंज का आज का रेट है 202.70 रुपये। डेबिट और ईमेल ट्रांसफ़र के थ्रू आप ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। पाकिस्तान में हर बैंक में आप यहां से ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। वहां अकाउंट नहीं है, कैश बैंक डॉट भी हासिल कर सकते हैं। घर बैठे ऑनलाइन 24 घंटे ऑनलाइन मनी ट्रांसफ़र कीजिए। gondalbrothers.com पे आप लॉग इन हो जाइए। आज का रेट है 202.70 रुपये। कॉल कर लीजिए 9053060000 9053060000। थर्सडे मीडिया फनी से फोन मीडिया से हमारे साथ हुआ करते हैं। आलम ऑफिस से आफ्ताब आलम साहब से आपको मुलाकात कराएंगे। ग्लोबल एडवाइजरी इंक से नागपाल जी हमारे साथ होंगे। ब्रामटन टीम अप्लाइंसेस से सुल्ताना साहब भी आज हमारे साथ होंगे। कनेडियन इंग्लिश एयरलाइन 7:30 बजे, तफसीली खबरें 8 बजे, लाइव कॉल्स आपकी लेंगे तकरीबन 8:30 बजे के करीब और उसके बाद फिर यूट्यूब पे आधा घंटा और आपकी कॉल्स लेंगे। और भी कुछ मौजूदात रहेंगे हमारी और आपकी बातें होंगी, लेकिन ये सबको सुनने के लिए आपको हमारे साथ रहना है अब से 9 बजे तक। मैं आपका होस्ट दोस्त अरशद भट्टी हूँ। मेरे छोटे भाई सामिन, मुस्तकबिल में जलने वाले चिराग माजी के अंधेरों को भी दूर कर देते हैं। ख्याल, उम्मीद और यकीन से वासिल हो जाए तो हर माजी खुशगवार है, हर मुस्तकबिल रोशन है। रोशनी ख्याल की है, वाकयात की नहीं। हाल की इस्लाह के लिए ख्याल की इस्लाह ज़रूरी है। हम माजी और आइंदा को सिर्फ हाल ही में सोच के तौर पर देख सकते हैं। हाल का आईना कभी अक्स माजी दिखाता है, कभी परतोए मुस्तकबिल। आईना कजला जाए तो माजी भी तारीख और मुस्तकबिल भी आने। हाल के आईने की आप ख्याल से हैं। ख्याल की इस्लाह हो जाए तो सारी ज़िंदगी की इस्लाह हो जाती है। हाल, माजी और मुस्तकबिल सिर्फ पहचान के हवाले हैं। ज़िंदगी एक इकाई है, वहदत है, जामियत है। इसका फ़ैसला आखिरी लम्हे में होता है कि ज़िंदगी क्या थी, नवाजिश या आजमाइश, इनाम या सज़ा, कामयाब या नाकाम, बामुराद या नामुराद, मईसत या मगफरत। हमारा फ़र्दा, हमारा माजी सिर्फ हमारे हाल की करिश्मा साजी है। जिसका आज खूबसूरत है उसका माजी भी खूब, मुस्तकबिल भी खूब। जिसका आज परागंदा हो उसका गुज़िश्ता भी परागंदा, आइंदा भी परागंदा। हाल की इस्लाह होना ज़रूरी है। हाल की इस्लाह क्या है? माजी पर सिद्क़ दिल से इस्तग़फ़ार और मुस्तकबिल का खुशगवार इंतज़ार। उम्मीद और तकय्यन के साथ उसकी रहमत की वसूतों के सामने, उसकी लामहदूद अता के सामने अपनी ख़ता, अपनी कमायगी और अपनी बेमायगी को सिरनगू कर देना। उसके इंसाफ से डरना, उसके फ़जल का आसरा मांगना, यानी अपने आमाल पर भरोसा करने की बजाय उसके फ़ैसलों पर भरोसा करना। तारीख रातों को सूरज की ताबनाकी अता करने वाला इंसान की ज़िंदगी की तीरगी और मायूसी को उम्मीद की रोशनी अता करता है। ज़मीन व आसमान के लश्करों का मालिक हमारे लिए बहुत कुछ रखता है, शर्त यह है कि हम उसे तस्लीम करें। 416-593-0003 रेडियो पाकिस्तान टोरंटो CMR 101.3 FM में आपका होस्ट और दोस्त अरशद भट्टी हूँ।

करम ज्वेलर्स। अगर आपको दुबई और मिडिल ईस्ट जैसे जेवरात की तलाश है तो अब आपको दूर जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं। आज ही हमारे मिसिसागा रिजवे के स्टोर पर तशरीफ लाइए अल करम ज्वेलर्स, जहां आपको मिलेंगे सोने के बेहतरीन कंगन, कड़े, झुमके, हार और सोने के बेहतरीन सेट्स। शादी हो या मेहंदी या कोई भी फंक्शन, आपकी पसंद के तमाम जेवरात आपको हमारे स्टोर पर मौजूद मिलेंगे। आज ही विजिट कीजिए अल करम ज्वेलर्स, 3465 प्लैटिनम ड्राइव, यूनिट 99, मिसिसागा। 9058280009, इट्स 9058280009। यू लॉग इन हो अलकरम ज्वेलर्स.ca। अलकरम ज्वेलर्स, फरमाइश आपकी, गारंटी हमारी।

0: लीसा की याद नहीं आई तुझे जसी? जसी को छोड़िए, क्योंकि लीसास कॉस्मेटिक्स लाए हैं स्प्रिंग वेयरहाउस सेल खास आपके लिए। परफ्यूम, स्किन केयर, मेकअप, हेयर केयर, डिजाइनर सनग्लासेस, चॉकलेट्स और भी बहुत कुछ विद मेगा सेविंग्स अप टू 80% ऑफ। धुरंधर डील्स ऑन ऑल योर फेवरेट वर्ल्ड फेमस ब्रांड्स जैसे टॉम फोर्ड, वर्साचे, अरमानी, हजारो एंड मोर। आपको आना है 135 कॉमर्स वैली ड्राइव, ईस्ट मार्कम, हाईवे 404 और 407 के बेहद करीब एंड क्लोज टू 401। सेल चलेगी अप्रैल 18 से मई 10 तक, परफेक्ट फॉर मदर्स डे गिफ्टिंग। तो ज्यादा स्वैग एट कम प्राइस सिर्फ लीसास वेयरहाउस सेल पर। विजिट lisascosmetics.com।
1: अपने खुश के लम्हात को यादगार बनाएं। आइकॉन इवेंट स्पेस में शादी, मेहंदी, रिसेप्शन, बर्थडे पार्टीज, कारपोरेट इवेंट्स, गजल और कवाली नाइट्स या किसी भी तकरीब के लिए तीन खूबसूरत और शानदार हॉल्स हैं, जहां 1200 तक गेस्ट्स की भरपूर मेहमान नवाजी कर सकते हैं। तमाम हलाल डिशेस पाकिस्तानी शेफ की निगरानी में रिवायती जायकों के साथ तैयार की जाती हैं। इन हाउस स्टेजिंग, ऑडियो विजुअल सिस्टम, 10 प्रोजेक्टर स्क्रीन्स, मुकम्मल टेक्निकल सपोर्ट के साथ। बहुत ही कन्वीनियंट लोकेशन, 6887 डिक्सी रोड, मिसिसागा, एम्पल पार्किंग और क्लोज टू हाईवेज। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन एंड बुकिंग कॉल मिस्टर आलम 4374252500 और ब्रॉम्पटन में क्वींस मैनर इवेंट सेंटर 2 ऑक्शन लेन ब्रॉम्पटन। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 416-814-3600। क्वींस मैनर इवेंट सेंटर। तैयार हो जाएं इस बकरीद पर सबसे बड़े मेले के लिए, इनाम घर ईद शॉपिंग फेस्टिवल 23, 24, 25 और 26 मई को दोपहर 12 से रात 12 बजे तक। ईद मेलों के लिए मशहूर कैपिटल बैंक्वेट हॉल मिसिसागा में शॉपिंग, खाने, फैमिली एंटरटेनमेंट और रोजाना स्पॉन्सर्स की जानिब से गोल्ड आइटम्स गिव अवे। रोजाना हजारों लोगों की आमद मुतवक्के। वेंडर्स के लिए सुनहरी मौका। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे अर्ली बर्ड प्राइसिंग का फायदा उठाइए। फ्री एंट्री, फ्री पार्किंग। वेंडर्स और स्पॉन्सर्स अभी कॉल करें 416-710-6777। इट्स 416-710-6777। मिठा फर्नीचर होलसेल गैलरी। अगर आप ब्रांड न्यू, पायदार और लेटेस्ट डिजाइन के फर्नीचर की तलाश में हैं, तो मिठा फर्नीचर आपकी तमाम जरूरियात को पूरा करता है। बेहतरीन क्वालिटी और प्राइस की गारंटी। मिसिसागा, ब्रामटन, स्कारब्रो और कैम्ब्रिज की चारों लोकेशंस पर ब्रांडेड, ट्रेडिशनल और हाई एंड फर्नीचर की बेहतरीन वेरायटी। फ्लोर मॉडल्स पर स्पेशल डिस्काउंट। दूसरे स्टोर से 10-30% तक डिस्काउंट मॉडल नंबर की गारंटी के साथ। चारों लोकेशंस के लिए एक ही नंबर 416-901-2810। इट्स 416-901-2810। योर लॉगिन हो mithafurniture.com। हर हफ्ते स्पेशल डील्स का फायदा उठाइए। मिठा फर्नीचर, हर तरह का फर्नीचर होलसेल प्राइस पर।
2: जी हाँ, हर तरह का फर्नीचर होलसेल प्राइस पे आपको मिलेगा। मिठा फर्नीचर होलसेल गैलरी आपको चार लोकेशन से सर्व कर रहे हैं। पांचवी लोकेशन बहुत जल्द ओपन होने जा रही है। मिसागा लोकेशन के 3050 वेगा बुलेवार्ड, 295 क्वीन स्ट्रीट ईस्ट ब्रामटन, 1319 कैनेडी रोड स्कारब्रो, 30 पाइन बुश रोड कैम्ब्रिज। चार लोकेशन के लिए की नंबर है 416-901-2810। मिठा फर्नीचर डॉट कॉम इनकी वेबसाइट है। 10-30% फॉर श्योर डिस्काउंट आपको मिलेगा अगर कंपेयर करेंगे बाकी स्टोर से। और ब्रांडेड फर्नीचर की बहुत बड़ी वैरायटी इनके पास है। हर तरह का फर्नीचर आपको मिलता है और ख़ुद जाते हैं। पिछले दिनों आपको याद होगा अमेरिका गए हैं, एक स्पेशल किस्म के मैट्रेस की

0: बात हो रही थी। एवरी वीक स्पेशल स्पेशल डील्स लेकर आते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं खुश आमदीद किंग मेडर साहब, वेलकम यू इन वेरी पाकिस्तान टोरंटो।
1: थैंक यू भट्टी साहब और रेडियो सुनने वाले सभी बहन भाइयों को मेरी गुड इवनिंग, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मदर्स डे आने वाला है और खुशियां हैं, माँ का आशीर्वाद मिले और माँ का आंचल का छाया हम सभी पे, माँ का स्वस्थ रहे, छाया बना रहे। और कहते हैं ना, ये एक दिन नहीं है, रोज ही माँ का, कहते माँ का तो प्यार, जब रब का रूप ही माना जाता है माँ को।
0: सही,
1: बिल्कुल, आपको जो आपको कहा था, प्रॉमिस करा था कि बताएंगे, जी हाँ, पांचवी लोकेशन लंदन ओंटेरियो में खोलने जा रहे हैं जी। तो आइए, सब आप बड़ों का आशीर्वाद, छोटे बहन भाइयों का स्नेह प्यार जो आप हमने दिया, उसकी वजह से एक से दो, दो से तीन, तीन से चार, चार से पांच, और शहर से दूर जाके भी
0: बहुत मुबारक हो आपको।
1: थैंक यू वेरी मच जी। मैंने आपको कहा था कि अगले वीक का करेंगे, और मान मुझे मतलब बड़ा मान महसूस हो रहा है बताते हुए, लंदन में भट्टी साहब एक वंडरलैंड रोड है जो हाईवे से निकलते ही कम से कम 1.5 किलोमीटर, 1.5 से 2 किलोमीटर जैसे शॉपिंग सेंटर ही बना हुआ है।
0: अच्छा।
1: जिसमें सारे ब्रांड नेम स्टोर, मतलब आपके टोटली ब्रांड नेम स्टोर है, जैसे स्ट्रिप प्लाजा जिसे कह सकते हैं रोड के ऊपर। तो हमें भी मान महसूस है कि उस ब्रांड नेम बिजनेस सेंटर के अंदर मिड्डा फर्नीचर का भी नाम है, और लेफ्ट में हमारे जो होम सेंस है, राइट में बुक क्लियर है, और दो अच्छे जो विनर के साथ, ब्रांड नेम के साथ, बाकी सब बड़े बड़े जो होम डिपो, कैनेडियन टायर जो, और फर्नीचर वाले भी, दूसरे भी, टेस्ला का भी, मतलब हर चीज जो होती है जैसे, तो वहां पे है। तो अच्छा लगता है कि जब वह कहते हैं ना, किसी संगत में, अच्छों के संगत में जाके बैठते हैं, तो फिर तभी, जैसे मैं पिछली बार मैट्सों का जिक्र करा था, अभी मेपल यहाँ लगाए हैं, अभी उधर लगाएंगे, उधर भी पहले थे लगाते हैं वहां भी, लेकिन इधर लंदन साइड में मेपल वुड की भी आपकी, मतलब जो भी आप बनाना चाहेंगे, यू नेम इट वी हैव इट, आप ड्राइंग करेंगे वो बनाएंगे। इन हाउस प्रोडक्शन की वो हमने डीलरशिप ली है, एशले फर्नीचर के जो डीलर है, एशले फर्नीचर की भी एक लाइन अलग से आई है कि जिसमें बहुत जो हटके हैं, बहुत कम स्टोरों को मिलती है, हमने रिक्वेस्ट करके वो एक लाइन भी ऐड करी है। तो चाहते हैं कि आपके घर में फर्नीचर अच्छा हो भट्टी साहब। तो फर्नीचर देखें, दो चीजें हैं, एक तो प्राइस, प्राइस प्राइस प्राइस तो अच्छी होनी ही चाहिए, बचत सबके अच्छी लगती है। चाहे हम 3 मिलियन का घर भी ढूंढ रहे हो, तो हम कहते हैं थोड़ा सस्ता मिल जाए, थोड़ा बार्गेन हो जाए, वो अलग बात है। लेकिन हर मॉडल, जैसे हर घर की कीमत है ना, उसी तरह हर मॉडल फर्नीचर की भी कीमत है। तो जब आप कई बार, आप हम भी, मैं ही वही बोल रहा हूँ यार, मैंने कहा आओ जो जी हमारे पास आ जाओ, हमारे अच्छे हैं, नहीं बिल्कुल हम अच्छे हैं, लेकिन मैं कहता हूँ आप पहले अजमाया करें, पहले चेक कर लिया करें, कंपेयर कर लिया करें, प्राइस चेक कर लिया करें। हमारे में दो ही हम हटके हैं, एक तो हम चाहते हैं कि आप पहले हमारे स्टोर पे आए, आपको लगे कि जिस प्यार से आपको न्योता दे रहे हैं, जिस प्यार से आपको बुला रहे हैं, आपको वो प्यार मिलना चाहिए।
0: सही।
1: फिर पहले वो रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए, फिर बीइंग ए कस्टमर आप जैसे आपने शॉप अराउंड करा हुआ है या किया हुआ, कंपेयर करें, क्वालिटी कंपेयर करें, प्राइस कंपेयर करें। तो हमारी प्राइस 10-30% सस्ती पाएंगे, क्योंकि कंटेनर बाइंग की वजह से, अदरवाइज और कोई ऐसा मैजिक किसी के पास भी नहीं हो सकता भट्टी साहब।
0: सही बात।
1: तो अभी और 2% वॉल्यूम बढ़ गया, तो चलते हैं मदर्स डे की डील की तरफ। हमने सॉलिड वुड के बेड लगाए हुए हैं, कस्टम मेड बेड लगाए हुए हैं, और अगर आप 6-पीस बेडरूम सेट ढूंढ रहे हैं, हमारी वेबसाइट पे लगा हुआ है एम मॉडल 6770 1099 का, $200 मदर डे पे ऑफ कर रहे हैं। तो एक्चुअली कि अभी नए नए मॉडल जो आए हैं, वो जो हाई जो सोफे, मजे की बात ये है कि फैब्रिक आप वॉशेबल है, मशीन में धो सकते हैं उसकी, अगर आपको मैला, क्योंकि लाइट कलर अच्छे लगते हैं, और मेरी बहनें माताएं कहती हैं कि बच्चे छोटे हैं, ग्रैंड किड छोटे हैं, तो वो खराब हो जाएगा, लेकिन चिंता नहीं करें, आप मशीन में भी वॉश कर सकती हैं अगर आपको लगता है कि खराब हो जाएगा और या दाग लग जाएगा। तो ये सब कुछ पाने के लिए आपको आए एक बार मिड्डा फर्नीचर आपकी इंतजार में। और इस बार तो मैं चाहूंगा कि मेरी जो तुल्य माताएं हैं, बड़ी बहनें हैं, वो आए, मेरे सिर पे भी हाथ रख जाएंगी तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि आपका प्यार, आपका दुलार से ही हम बढ़ रहे हैं। और छोटी बहनें जो खुद एक माँ, जिनको माँ बनने का सौभाग्य, वो भी एक सौभाग्य ही होता है, तो अगर वो बना आपको है, तो मदर्स डे पे घर से निकले परिवार के साथ, तो इस भाई को मिल जाए, छोटे भाई को मिल जाए, अपने छोटे बच्चे जैसे समाज या जो भी रिश्ता बनाए उससे मिल जाए, और छोटी जो बच्चियां हैं वो अंकल को मिल जाए, हमें अच्छा लगेगा आपका प्यार पाके, और अच्छा लगता है। तो भट्टी साहब, ये सब आपसे सीखा है, तो कहते ना आपको भी बहुत बहुत, सबको सबको ये अच्छे त्योहार है। माँ तो कहते ना कि आप जो आई थिंक भट्टी साहब जितना मैंने माँ के बारे में मतलब जो पाकिस्तान से जितने वो गीतों में या किसी और में या कुरान में या कल्चर में जितनी व्याख्या उन्होंने, वैसे तो सभी ने करी है
0: जी जी।
1: पर जो वहां हुई है ना कि माँ को का कहा क्या दर्जा, मतलब हर जगह हम कहते हैं लेकिन वो दे के दिखाया है ना। तो मैं शायद कल ढूंढ के लाऊंगा आपसे, वो कहूंगा कि वो आप भी खाएं तो मतलब बहुत
0: अच्छा लगेगा
1: कि वो माँ तो वो है। कुल जी तो थैंक यू वेरी मच भट्टी साहब, और 4169012810 4169012810 जैसे
0: आपको बहुत मुबारक 5 मिनट क्वेश्चन की। थैंक यू वेरी मच मेरे बोला ठीक, नंबर नोट कीजिए 4169012810 4169012810 middhafurnitures.com इनकी वेबसाइट है। थोड़ा सा वक्त है खबरों से पहले, तो या फिर मेरे ख्याल वक्त थोड़ा कम है, खबरों को तरफ पहले चलेंगे और उसके बाद फिर हम आपको आज की शायरी सुनाएंगे, क्योंकि सिर्फ एक मिनट रहेगा, मैं 2-3 जो है आप तक इन्फॉर्मेशन पहुंचा देता हूं। लीजाज कॉस्मेटिक्स की जनाब, अगर अभी तक आप नहीं गए हैं तो आप चले जाइए, लास्ट इसकी डेट है 10 तारीख लास्ट डेट होगी मंडे, और अप टू 80% की सेविंग आपको हो रही है। मदर्स डे की बहुत ज़बरदस्त यहां पे आपको गिफ्ट्स मिल जाएंगे। अभी तक अगर आपने विज़िट नहीं किया तशरीफ ले जाइए, 135 कॉमर्स वैली ड्राइव मार्कहम आपको जाना है, नेक्स्ट टू 404-407 एंड क्लोज टू 401, और यहाँ पे आपको परफ्यूम्स भी मिल सकते हैं, कॉस्मेटिक्स एंड स्किन ट्रीटमेंट प्रोडक्ट्स मिल सकती हैं, हेल्थ एंड ब्यूटी प्रोडक्ट्स मिल सकती हैं, प्रोफेशनल हेयर केयर प्रोडक्ट्स, बेशुमार आइटम्स हैं, आप मिस मत कीजिएगा, कुछ ही दिन बाकी हैं, इसका आप फ़ायदा उठा लीजिए। 135 कॉमर्स वैली ड्राइव ईस्ट मार्कहम, या lizazcosmetics.com पे जाके आप मज़ीद इन्फॉर्मेशन भी ले सकते हैं। और जनाब इनाम घर ईद फेस्टिवल होने जा रहा है 23, 24 और 25 मई को कैपिटल बैंकट हॉल में सागा में, और इन्होंने स्पेशल डील्स लगा दी, रेडियो पाकिस्तान के हवाला देंगे तो आपको स्टॉल बुकिंग में स्पेशल स्पेशल रियायतें कर देंगे, और किसी दिन, एक दिन के लिए, दो दिन के लिए, चार दिन के लिए करेंगे तो बहुत ही ज़्यादा ह्यूज सेविंग आपको होने वाली है। हर तरह की स्टॉल की बुकिंग के लिए आप कॉल कर लीजिए शम्स रहमान साहब को 4167106777 7:30 हो चुके, लिए चलेंगे आपको हम कैनेडियन हेडलाइंस की तरफ, जो आपके लिए पेश करते हैं मानी।
2: न्यूज़ के लिए हिमदामत दिया है टीम भट्टी रियल स्टेट, फॉर ऑल योर रियल स्टेट नीड्स कॉल तलहा भट्टी 6472957861 6472957861।
3: Good evening, you're listening to Radio Pakistan Toronto. This is Meevani with local updates. Service is currently suspended between Jane and Christie Station on Line 2 due to an injury on the track. A man is critically injured after being struck by a vehicle in Scarborough. Ford government appoints administrator at Conestoga College following egregious financial decisions. The British Columbia provincial government has announced a new secondary school in Thunder Ridge to replace the one that was the site of mass shooting in February. Toronto police have issued a community safety warning about a high-risk offender who has been released from prison and will be living in Toronto. The Don Valley Parkway will be closed this weekend for maintenance work ahead of a summer season. The expansion of Billy Bishop Airport could impact plans for Toronto's newly planned neighborhood. 3 Canadians in isolation after Henta virus outbreak on cruise. The government of Manitoba has taken a public health emergency over its HIV infection rates. Stay tuned on Radio Pakistan Toronto for more such updates. Good night.
0: कनेडियन इंग्लिश हेडलाइंस आपके लिए मानी पेश कर रही थी, आप सुन रहे हैं रेडियो पाकिस्तान टोरंटो CMR 101.3 FM। पाकिस्तान के दफ्तर खारजा के तर्जमान का कहना है कि अमरीका ईरान जंगमंदी तवक्को से पहले हो सकती है, पाकिस्तान अमन वादे के लिए बहुत उम्मीद है, लेकिन जनाब ये भी इतलात हैं कि ईरान और अमरीका दोनों ने एक दूसरे के खिलाफ जंगमंदी की खिलाफ वर्जी के जो हैं वो इल्ज़ाम लगाए हैं, एक दूसरे पर फायरिंग हुई है, उसकी तफसील आगे चल के बताएँगे। इस वक्त आपके लिए पेश कर रहे हैं आज की शायरी।

मोहब्बत औस की सूरत, प्यासी पंखड़ी के होंठ को सैराब करती है, गुलों की आस्तीनों में अनोखे रंग भरती है, शहर के झटपटे में गुनगुनाती मुस्कुराती जगमगाती है। मोहब्बत के दिनों में दश्त भी महसूस होता है, किसी फिरदौस की सूरत, मोहब्बत औस की सूरत, मोहब्बत अब्र की सूरत, मोहब्बत अब्र की सूरत दिलों की सरजमीं पे घिर के आती है और बरसती है। चमन का जर्रा जर्रा झूमता है, मुस्कुराता है, अजल की बेनमू मट्टी में सब्जा सर उठाता है। मोहब्बत उनको भी आबाद और शादाब करती है जो दिल हैं कब्र की सूरत, मोहब्बत अब्र की सूरत, मोहब्बत आग की सूरत, मोहब्बत आग की सूरत बुझे सीनों में जलती है तो दिल बेदार होते हैं। मोहब्बत की तपिश में कुछ अजब असरार होते हैं कि जितना ये भड़कती है अरू से जा महकती है, दिलों के साहिलों पे जमा होती है और बिखरती है। मोहब्बत जाग की सूरत, मोहब्बत आग की सूरत, मोहब्बत ख्वाब की सूरत, मोहब्बत ख्वाब की सूरत निगाहों में उतरती है किसी महताब की सूरत। सितारे आरजू के इस तरह से जगमगाते हैं कि पहचानी नहीं जाती, दिले बेताब की सूरत। मोहब्बत के शजर पर ख्वाब के पंछी उतरते हैं तो शाखें जाग उठती हैं। थके हारे सितारे जब जमीन से बात करते हैं तो कब की मुंतजर आंखों में शम जाग उठती हैं। मोहब्बत इनमें जलती है चरागे आप की सूरत, मोहब्बत ख्वाब की सूरत, और मोहब्बत दर्द की सूरत, मोहब्बत दर्द की सूरत गुज़श्ता मौसमों का इस्तारा बन के रहती है, शबाने हिजर में रोशन सितारा बन के रहती है। मुंडेरों पर चरागों की लोएं जब थर थराती हैं, नगर में नाउमीदी की हवाएं सनसनाती हैं, गली में जब कोई आहट कोई साया नहीं रहता, दुखे दिल के लिए जब कोई भी धोखा नहीं रहता, गमों के बोझ से जब टूटने लगते हैं शाने तो ये उन पे हाथ रखती है किसी हमदर्द की सूरत। गुजर जाते हैं सारे काफले जब दिल की बस्ती से, फिजा में तैरती है देर तक ये गर्द की सूरत, मोहब्बत दर्द की सूरत।

0: के मोहम्मद सलमान।
1: मॉर्गेज हो तो वही जो आपके लिए हो सही,
0: मॉर्गेज वही जो आपके लिए सही।
2: कॉल मोहम्मद सलमान एट 437-237-8888। इट्स 437-237-8888। लाइसेंस नंबर 12458।
3: कैनेडियन सोसाइटी ऑफ पीस एंड रिलीफ प्राउडली प्रेजेंट्स अली जफर for spiritual Sufi and Qawwali night. Join us on Saturday, May 16th at the Paramount Fine Food Center. Tickets starting from just $29. Available now on Ticketmaster.ca. For sponsorship and info, please call
4: 416-904-2046 or 416-662-7861.
5: डॉक्टर फयाज अहमद कुरैशी एंड एसोसिएट्स, अब मिसिसागा के बाद स्कारब्रो में 2155 लॉरेंस एवेन्यू ईस्ट, लॉरेंस और ब्रिजमाउंट का इंटरसेक्शन, 416-757-9999। दांतों की कोई भी बीमारी हो, आप एतमाद के साथ डॉक्टर फयाज अहमद कुरैशी और उनकी तजुर्बाकार टीम की प्रोफेशनल सर्विसेज का फायदा उठाइए। तमाम इंश्योरेंस प्लान एक्सेप्ट करते हैं। इंश्योरेंस ना रखने वालों के लिए स्पेशल डिस्काउंट। रूट कैनाल ट्रीटमेंट और री ट्रीटमेंट के स्पेशलिस्ट हैं। मिसिसागा लोकेशन 1110 ब्लूर स्ट्रीट ईस्ट, ब्लूर और डिक्सी के इंटरसेक्शन, 905-232-5670।
6: अगर आपकी कॉरपोरेशन पर कर्जे हैं जिसकी वजह से आप पर्सनली लायबल हो सकते हैं, तो ऐसी सिचुएशन में आप कॉरपोरेट बैंकरप्सी का सोच सकते हैं। इसके लिए अहमद मलिक ऑफ अहमद मलिक कर्जा माफ से राब्ता कर सकते हैं। साथ साथ अगर अभी तक आपने सीबा लोन पे ऑफ नहीं किया तो याद रखें, दिसंबर से पहले आपको ये लोन पे ऑफ करना होगा। डेडलाइन इज कमिंग सून। अहमद मलिक इस सिलसिले में आपकी मदद कर सकते हैं। मजीद मालूमात के लिए अभी कॉल कर लीजिए 905-783-1922। It's 905-783-1922.
7: SSR Auto Service, 921 Pape Avenue, Southeast Corner of Pape and Martimore. Har kism ki gaadiyon ki journal aur electrical repair ke liye tashreef laiye. Oil change, tire change, lights repair, brakes, suspension, muffler service, engine services. Iske alawa safety inspection, 3D laser alignment ke saath saath new aur used tires bhi available hain. Drive through maintenance aur namaz ki sahulat bhi. Mia Ashraf saab ya Nabil Ashraf saab se raabta kijiye 416-466-8782, 416-466-8782. Toronto mein 23 saal se 24/7 khulne wali wahid shop SSR Auto Service, 921 Pape Avenue. Sajna hai mujhe, sajna
8: ke liye. अलकरम ज्वेलर्स, अगर आपको दुबई और मिडिल ईस्ट जैसे जेवरात की तलाश है तो अब आपको दूर जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं। आज ही हमारे मिसिसागा रिजवे के स्टोर पर तशरीफ लाइए। अलकरम ज्वेलर्स, जहां आपको मिलेंगे सोने के बेहतरीन कंगन, कड़े, झुमके, हार और सोने के बेहतरीन सेट्स। शादी हो या मेहंदी या कोई भी फंक्शन, आपकी पसंद के तमाम जेवरात आपको हमारे स्टोर पर मौजूद मिलेंगे। आज ही विजिट कीजिए अलकरम ज्वेलर्स, 3465 प्लैटिनम ड्राइव, यूनिट 99, मिसिसागा। 9058280009। It's 905-828-0009. You log in ho alkaramjewelers.ca. Alkaram Jewelers, farmaish aapki, guarantee hamari.

0: at Palacio Event Center, 34107 Court, Mississauga. May 24th, 25th, and 26th at Icon Event Space, 6887 Dixie Road, Mississauga. No tickets, free parking. Enjoy the shopping player, clothing, jewelry, mehndi, churiyan, food, entertainment, and much more. Call Shaheen Khan or Matanat Khan at 416-825-9275.
1: Barbecue Tonight ki dusri location 5165 Dixie Road, Dixie aur Emco ka intersection Mississauga mein. 200 se zyada logon ki gunjayish, badi parties bhi aap arrange kar sakte hain. Barbecue items, Bihari kebab, Sikh kebab, kadahi, biryani, taza naan aur beshumar dishes. Zaika wahi aur khoobsurat second location. Parties ki booking ya malumat ke liye call kijiye 905-282-9868. Barbecue Tonight ki second location 5165 Dixie Road, Dixie aur Emco ka intersection Mississauga mein. 905-282-9868.
2: If you are involved in a car accident or a slip and fall, you can speak to a lawyer directly. Call Muhammad Alam, barrister at law and personal injury lawyer at Alam Law Office. No fee unless he wins your case. For free advice, call 416-625-2636. That's 416-625-2636.
3: जी हाँ, 416-625-2636 हॉटलाइन नंबर है आलम लॉ ऑफिस का. लॉयर्स आपकी कॉल का जवाब देते हैं. अगर आपका कार एक्सीडेंट हो जाता है, स्लिप एंड फॉल, फ्रॉम द सीन कॉल कर लीजिए. आप लॉयर्स जो हैं, एक्सपीरियंस लॉयर्स आपकी कॉल का जवाब देंगे. हमारी कम्युनिटी की एक्सीडेंट क्लेम के वाली सबसे बड़ी फर्म है आलम लॉ चैम्बर. ऐसा कानूनी मदद के लिए आपको हर कानूनी, हर किस्म की कानूनी मदद फराहम होगी, चाहे वो क्रिमिनल लॉ हो, फैमिली लॉ हो, रियल एस्टेट लॉ हो. आफ्ताब आलम साहब हमारे साथ मौजूद हुआ करते हैं आज के दिन. खुश आमदीद कहेंगे. आफ्ताब भाई अस्सलाम वालेकुम. आफ्ताब भाई अस्सलाम वालेकुम.
4: जी अस्सलाम वालेकुम.
3: आफ्ताब भाई, बाज़ुकात ऐसा होता है कि एक्सीडेंट जो है रोड के ऊपर एक्सीडेंट नहीं होता, बाज़ुकात पार्किंग लॉट में है या आप अपने ड्राइववे से गाड़ी निकाल रहे हैं, कहीं टच हो जाती है, बाज़ुकात बैक करते हुए कहीं लग जाती है और अच्छा खासा नुकसान हो जाता है, तो ये भी कवर होता है एक्सीडेंट क्लेम में ही आएगा ये?
4: जी बिल्कुल. अगर आपका, आपकी गाड़ी का किसी भी ऑब्जेक्ट के साथ या किसी भी दूसरी गाड़ी के साथ कोलिजन हुआ है, तो दैट्स कॉल्ड एन एक्सीडेंट. अगर उसमें कोई इंजरी हुई है आपको, वो बजाय के ऑब्जेक्टिव इंजरीज हो या सॉफ्ट टिश्यू इंजरीज हो, तो आपके इंजरी का क्लेम भी होता है. लेकिन अगर आपको कोई इंजरी नहीं हुई है, गाड़ी निकालते वक्त हल्का सा डैमेज हो गया है या पास गाड़ी पे आपका एक्सीडेंट हो गया है, कोई मार कर चला गया है, तो ऐसे सिचुएशन पे आपके पास प्रॉपर्टी डैमेज क्लेम करने का राइट होता है अपने इंश्योरेंस कंपनी के थ्रू.
3: वेरी राइट. आप ऐसी सूरत हाल हो तो आप रब्ता कर सकते हैं और मशवरा ले सकते हैं. 416-625-2636, 416-625-2636. स्लिप एंड फॉल पे काफ़ी दिन से हमने बात नहीं की, थोड़ा सा ये बताइएगा, क्योंकि अब तो मौसम बेहतर है, वो उस तरह से आइस पे तो नहीं है, लेकिन बाज़ुकात स्टोर्स में कहीं और, बाज़ुकात लोग कहीं घर के बाहर भी कहीं गिर जाएँ तो उसको भी सोचते हैं कि ये क्लेम हो सकता है, उसको थोड़ा सा अपडेट कीजिएगा.
4: जी बिल्कुल. स्लिप एंड फॉल के हवाले से, अगर आप किसी स्टोर में, किसी की प्रॉपर्टी में गए हुए हैं, कोई विजिटिंग कहीं पे किसी क्लिनिक में गए हुए हैं या कोई किसी भी लोकेशन पे गए हुए हैं, जो कि होम ऑक्यूपायर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो अपने प्रॉपर्टी को मेंटेन रखें, सेफ रखें, अगर वहां पर कोई किसी ने सफाई की है या उसमें जो है वो कोई वाटर स्पिल ओवर हुआ हुआ है, उसकी वजह से आप जो है वो गिर जाते हैं और आपको कोई इंजरी सस्टेन होती है, तो ऐसे सिचुएशन पे यू कैन सू द होम ओनर या प्रॉपर्टी ओनर को आप सू कर सकते हैं अंडर ऑक्यूपायर्स लायबिलिटी एक्ट के तहत. इसमें इम्पोर्टेंट ये है कि आपने पिक्चर जरूर रखनी है, लेना उस जगह की, और जो प्रॉपर्टी ओनर है या मैनेजमेंट की कंपनी, इसको नोटिफाई जरूर करना है अपने इंसिडेंट के बारे में, और हॉस्पिटल जाके चेकअप करवाएं, और फ्रॉम द सीन ऑफ इंसिडेंट या अर्लीस्ट अपॉर्चुनिटी पे यू कैन कॉन्टेक्ट आलम लॉ फर्म.
3: नंबर कॉल इज 416-625-2636, 416-625-2636 आपके का नंबर है. अच्छा, थोड़ा सा आप जो आलम लॉ चैम्बर में जो सर्विसेज हैं, मैं चाहूँगा थोड़ा सा उस हवाले से बात कीजिएगा. बहुत से लोग हैं वो बाज़ुकात सही लॉयर्स के पास नहीं जा पाते, वो कहते पता नहीं बहुत ज़्यादा फीसिस होती हैं. रियल इस्टेट का तो चले मामला ऐसा है, माशाल्लाह आपका बड़ा ज़बरदस्त है, बल्कि आपके यहाँ बड़ी एक्सपीरियंस क्रिमिनल लॉ के, फैमिली लॉ के लॉयर्स भी हैं, तो कम्युनिटी को इस हवाले से थोड़ा सा ये गाइड कर दीजिए कि ज़रूर जाहिर है फीस तो बहुत होती है लॉयर्स की, लेकिन इतनी भी नहीं शायद के लोग परेशान हों इससे.
4: जी बिल्कुल. जो इंजरी एंड डिसेबिलिटी लॉ का जहाँ तक मामला है, उसमें हमारी कोई फीस नहीं होती जब तक हम केस को विन ना
3: ठीक हो गए.
4: जो नॉन इमरजेंसी मैटर्स हैं, जो आलम लॉ चेंबर पे हमारे पास लीगल सर्विसेज मौजूद हैं, यानी कि रियल एस्टेट की क्लोजिंग का मामला हो, फैमिली लॉ, क्रिमिनल लॉ, जस्ट एंड स्टेट, हाईवे ट्रैफिक एक्ट, सिविल लिटिगेशन के लिए जो हमारी फीस है दैट इज वेरी रीजनेबल. देखें लॉयर है उसकी फीस तो होगी,
3: बिल्कुल होनी, ये तो लाजमी
4: है, कंपेटिटिव फीस है. उसमें जो है वो यू गेट द एक्सेप्शनल बेस्ट लीगल सर्विस एंड रिप्रेजेंटेशन. और इसमें अगर कोई मामला हो, आपके कोई हेल्प चाहिए, यू कैन कॉन्टेक्ट आलम लॉ चैम्बर एट 905-564-5953.
3: आलम लॉ ऑफिस जो है और आलम लॉ चैम्बर जो है, ये वैसे सोशल वर्क के वाले से भी खासी शोहरत रखते हैं और कम्युनिटी को इस वाले से काफ़ी हेल्प करते हैं. अगर आपका कोई प्रॉब्लम हो तो आप ज़रूर इनसे रब्ता कर सकते हैं. फॉर नॉन रेमिसमेंटर 905-564-5953. एमरजेंसी कॉल्स के लिए हॉटलाइन नंबर है 416-625-2636. आफ्ताब भाई थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया. इंशाल्लाह अगले हफ्ते आपसे बात करते हैं. थैंक यू. नंबर नोट कीजिए आप 416-625-2636, 416-625-2636. रेडियो पाकिस्तान टोरंटो CMR 101.3 FM. पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान मैच जो है वो 8 तारीख को खेला जाएगा. हमारे यहाँ रात को ही 11 बजे मेरे ख्याल में शायद पाकिस्तान और बांग्लादेश का पहला टेस्ट शुरू हो जाएगा. आज दोपहर में खबर आई कि बाबर आजम जो है इंजरी का शिकार हो गए और पहले टेस्ट मैच से आउट हो गए. प्रैक्टिस करते रहे हैं, PSL बहुत ज़बरदस्त खेला है, ये समझ आई कि कहाँ पे इंजरी किस वक्त हुई है. घुटने की कहते हैं इंजरी हुई है और डॉक्टर्स जो हैं उनकी इंजरी का जायज़ा ले रहे हैं. मज़ीद अपडेट बाद में शेयर की जाएगी. और ये कह दिया गया कि वो पहले टेस्ट मैच से जो है रूल आउट उनको कर दिया गया है. मीरपुर ढाका में कल पहला टेस्ट शुरू हो रहा है, 16 मई से दूसरा टेस्ट सिलेट में खेला जाएगा. PSL जीतने में कामयाब रहे हैं. बाबर आजम बड़ी ज़बरदस्त उन्होंने बैटिंग की है, क़यादत बहुत ज़बरदस्त की है, लेकिन ये अब तक कोई क्लैरिफिकेशन नहीं आई है कि क्या है. और इसके ऊपर जाहिर सी बात है फिर लोग सवाल तो करते ही हैं. 416-593-0003 रेडियो पाकिस्तान टोरंटो CMR 101.3 FM.

0: নম্বরটিকে কল মিলান।
1: Talhabad 647-295-7861. Reconstruction projects, residential and commercial properties. Special packages for first-time home buyers. A member of dedicated real estate professional team. Talhabad 647-295-7861.
0: To Talhabad Tico, call Milan.
1: Talhabad 647-295-7861.
2: याद रखें, अगर आप किसी भी क्रिमिनल ऑफेंस में चार्ज हो गए हैं या आपको कोई भी फैमिली लॉ का मसला है, जैसे कि प्रॉपर्टी डिवीजन, स्पाउसल सपोर्ट, चाइल्ड कस्टडी एंड एक्सेस, या आपका कोई सिविल लिटिगेशन का मामला है, कम्युनिटी के जाने पहचाने और तजुर्बेकार लॉयर ताहिर मजीद से राब्ता कीजिए 6478384773। कानूनी मामलात के लिए उनसे राब्ते कीजिए जो कानून को मुकम्मल तौर पर जानते हैं। फॉर ऑल योर लीगल मैटर्स कॉल ताहिर मजीद 6478384773।
3: अपने मकान की नेक्स्ट मंथ क्लोजिंग है, कुछ सोचा है टीवी और अप्लायंसेस कहाँ से लेने हैं?
4: हाँ, ब्रैम्पटन टीवी एंड अप्लायंसेस, जहाँ स्पेशल सेल चल रही है, टीवी, फ्रिज, वॉशर, ड्रायर, किचन रेंज हुड, माइक्रोवेव, सारा कुछ मिल जाएगा बहुत ही रीजनेबल प्राइस पे।
3: सेल तो अब चल रही है, पर हमें चाहिए नेक्स्ट मंथ।
4: आज के रेट हम लॉक भी करवा सकते हैं।
3: दैट्स वंडरफुल।
4: वहाँ से सेल फोन और इंडिया भेजने के लिए 220 वोल्ट का सारा सामान भी मिल जाएगा।
3: ब्रैम्पटन में ये कहाँ पे है?
4: ऑन बवेट, जस्ट वेस्ट ऑफ मैक्लॉगलन। टेलीफोन 905-450-2828 और विजिट brampton appliances.ca।
5: जी जनाब, नंबर आप नोट कर लें, 905-450-2828, ब्रैम्पटन टीवी अप्लाइंसेज हमारी करंट की सबसे बड़ा जनाब ये स्टोर है और हर मौके पे बहुत ही स्पेशल सेल लगाते हैं। आपके इल्म में है कि मदर्स डे आ रहा है, अनबिलीवेबल यहाँ पे डील्स आपको मिलेंगी। सुल्ताराना साहब हमारे साथ मौजूद हैं, खुश आमदीद कहेंगे। सुल्तान भाई, अस्सलाम वालेकुम।
6: वालेकुम अस्सलाम भट्टी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया जी। और जैसे आप भी मैसेज दे रहे हैं और हमारे कस्टमर्स के लिए भी जी, मदर्स डे स्पेशल है और मदर्स डे पे ये वैसे तो 365 डेज ही मदर के होते हैं,
5: बिल्कुल सही,
6: लेकिन ये जो एक दिन डेडिकेट किया गया है इसमें कंपनीज पार्टिसिपेट कर रही हैं और बहुत ह्यूज डिस्काउंट्स जो हैं वो हम लेके आए हैं अपने कस्टमर्स के लिए।
5: तो चले फिर टीवी से शुरू करते हैं, उसमें क्या स्पेशल है मदर्स डे पे?
6: जी, टीवीज में जी बिग स्क्रीन टीवी की बात करें तो सैमसंग कंपनी ने 1800, 1700, 1500 में भी हमने बेचा 85 इंच टीवी जो है मदर्स डे स्पेशल पे सिर्फ 999 का जी,
5: हजार से कम,
6: सिर्फ 999 में 85 इंच। अगर कोई कस्टमर मदर्स डे पे लेना चाहते हैं तो वो $1800 वाला ये टीवी 999 में ले सकते हैं। 6 मंथ में पे करेंगे, कोई इंटरेस्ट नहीं है, फ्री होम डिलीवरी मिलेगी। इसके लिए आपको आना है जी बोवेड एंड चिंकूजी पे, ब्रैम्पटन टीवी एंड अप्लायंसेस। 55 इंच लेना चाहें तो ओनली 399 में।
5: अच्छा, जबरदस्त।
6: 65 इंच लेना चाहें जी तो मदर्स डे स्पेशल ओनली 699 में। और अगर बिग स्क्रीन की बात करते हैं, जैसा कि फीफा वर्ल्ड कप आ रहा है जी, इसके लिए आपको जरूर मदर्स डे डिस्काउंट का फायदा उठा के अपने घर में बिग स्क्रीन टीवी ले जाना चाहते हैं तो हमारे पास 98 इंच भी इस वक्त स्पेशल प्राइस पे आया है, ओनली फॉर 3 more days, फ्राइडे सैटरडे संडे, सिर्फ 1999 में। $3500 इसकी प्राइस है जी, एटलीस्ट मिनिमम $1500 कस्टमर सेव करेंगे 98 इंच टीवी लेने पे। और मैं जैसे हमेशा कहता हूँ जी, $3000 तक की भी शॉपिंग करें तो $500 महीना करके पे कर सकते हैं, कोई इंटरेस्ट नहीं है। 905-450-2828 हमारा नंबर है जी, 905-450-2828 जी।
5: brampton appliances.ca पे जाके भी तमाम इंफॉर्मेशन ले सकते हैं आप। अच्छा सुल्तान साहब, अप्लायंसेस के हवाले से कुछ बताइएगा, उस पर क्या स्पेशल डील्स हैं?
6: जी बिल्कुल भट्टी साहब, इसमें ये भी है कि मदर्स डे डिस्काउंट का फायदा हमारे वो भी बहन भाई उठा सकते हैं इस डिस्काउंट को स्पेशल लेके, जिनके घरों की क्लोजिंग्स आ रही हैं, क्योंकि फ्रिज, स्टोव, डिशवाशर, 3-piece किचन बंडल जो $5000 वाला 40% डिस्काउंट पे आया है जी। हमारी होम अप्लायंसेस इंडस्ट्री में मैक्सिमम 15% या 20% या 25% का डिस्काउंट चलता है, लेकिन ब्रैम्पटन टीवी एंड अप्लायंसेस 40% डिस्काउंट जो है अपने कस्टमर्स के लिए लेके आए हैं जी हम मदर्स डे स्पेशल पे। सिर्फ ये है कि जो भी कस्टमर मई जून जुलाई में भी अगर डिलीवरी लेना चाहते हैं वो भी मदर्स डे पे इस 40% का मदर्स डे स्पेशल प्राइस का फायदा उठाएं, इन डील्स को लॉक कर लें। डिलीवरी डेट कोई भी सिलेक्ट की जा सकती है, जैसा कि बिल्ट इन कुकटॉप, बिल्ट इन वॉल ओवन, बिल्ट इन माइक्रोवेव, बिल्ट इन डिशवाशर, बिल्ट इन काउंटर डेप्थ फ्रिज, पूरे का पूरा बिल्ट इन किचन $12,000 वाला सिर्फ $6,900 में मिलेगा। कैलकुलेट करके देख लें, मोर देन 40% ही बनता है ये।
5: जबरदस्त।
6: इवन सिंगल पीस भी किसी ने लेना है तो सिंगल पीस 36 इंच वाइड फ्रेंच डोर फ्रिज है जो कि फुल साइज का फ्रिज है $2,500 वाला, सिर्फ $1,799 का है। $700 आप एक फ्रिज खरीदने पे सेव करेंगे स्टेनलेस स्टील पैकेज में। और अगर आप लेना चाहते हैं लॉन्ड्री में वॉशर एंड ड्रायर तो हमारे पास टॉप लोड वॉशर एंड ड्रायर बेस्ट प्राइस पे इस वक्त आया है जी, सिर्फ $1,099 का पेयर। वॉशर ड्रायर दोनों मिलेंगे $1,099 में, लार्ज कैपेसिटी टब है स्टेनलेस स्टील का। $1,099 का अगर आप टॉप लोड वॉशर एंड ड्रायर या $2,200 वाला $1,499 में फ्रंट लोड वॉशर एंड ड्रायर लेना चाहते हैं तो आपको आना है 801 बोवेड ड्राइव वेस्ट, जस्ट ईस्ट ऑफ चिंकूजी, ऑन बोवेड है, ब्रैम्पटन अप्लायंसेस, ये वन वर्ड है जी, brampton appliances.com। हमारी वेबसाइट से डायरेक्शन ऑफ द स्टोर भी ले सकते हैं। हमारा मैसेज जरूर पास ऑन करें अपने फ्रेंड्स, फैमिली, फ्रेंड्स, रिलेटिव को, चाहे उन्होंने बिग स्क्रीन टीवी सैमसंग QLED या सोनी ब्रेविया मॉडल लेने हैं तो ये मदर्स डे स्पेशल लोएस्ट प्राइस गारंटी के साथ लॉक किए जा सकते हैं। फ्री डिलीवरी होगी 905-450-2828, 905-450-2828।
5: सुल्तान साहब बस एक चीज और क्लियर, आपने वैसे बता दिया कि मतलब अगर अभी ये लॉक कर लेते हैं प्राइसेस तो चाहे आप डिलीवरी जब भी ले लें और जो भी प्राइसेस हो उसको आप 6 महीने के अंदर जो है वो इंस्टॉलमेंट्स में जमा करा सकते
6: हैं। ये भी है कि अगर आप फॉर एग्जाम्पल अगर आपको जून में भी चाहिए तो आप अभी मदर्स डे डिस्काउंट का फायदा उठा के इसको 10% डिपॉजिट के साथ लॉक करेंगे जी, और आपके जो 6 मंथ हैं वो डेट ऑफ डिलीवरी से शुरू होंगे। अच्छा, ना कि आज से।
5: वेरी गुड, वेरी गुड जनाब, अभी तो कॉल कर लीजिए 905-450-2828, brampton appliances.com इनकी वेबसाइट है। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया सुल्तान साहब, फिर अगले हफ्ते बहुत शुक्रिया, थैंक यू,
6: बहुत शुक्रिया।
5: नंबर नोट कीजिए 905-450-2828, brampton appliances.com इनकी वेबसाइट है। खबरों का वक्त करीब है, खबरों की तरफ लिए चलेंगे आपको। आपको एक चीज़ बता दें, कल भी मैंने बताया था, अब 2-4 दिन ज़ाहिर है रोज़ाना आपको बताते रहेंगे, हमारे टॉक शो में बाज़ वक़्त कॉलर्स रह जाते हैं तो हमने ये डिसाइड किया था कि 9 बजे तक CMR 101.3 FM पे तो हमारी नशा चलती है, हम उसको आधा घंटा या 20 मिनट जो भी रह जाएंगे उनको एक्सटेंड कर लेंगे। वो प्रोग्राम आप फ़ोन इसी नंबर पर ही करेंगे और लाइव आपके पास यूट्यूब पर भी आ रहा होगा, टिकटॉक पर भी आ रहा होगा, फेसबुक पर आ रहा है, और फ़ोन पर तो आप सुन ही रहे। तो अगर इसी तरह से कल भी हमने किया, आज भी इंशाल्लाह ताला करेंगे, तो इस तरह से हम 9:30 तक या 9:20 जब तक कॉलर्स रहेंगे उनको हम इंटरटेन करेंगे प्रोग्राम के बाद भी। 24 घंटे में shadabadipakistan.fm सुन सकते हैं, हमारा टेलीविजन चैनल है टोरंटो 360 TV। रेल सेट के वाले से कोई सर्विस चाहिए टीम भट्टी से रब्ता कीजिए, कॉल तला भट्टी 6472957861, 6472957861। इनाम घर ईद शॉपिंग फेस्टिवल 23, 24, 25 और 26 मई को कैपिटल बैंकट हॉल मिसागा में होने जा रहा है। स्टॉल बुकिंग के लिए आप रब्ता कर लें शम्स रहमान साहब से, 4 दिन का स्टॉल बुक करेंगे। रेडियो पाकिस्तान हवाले दिन पर बहुत ही स्पेशल डिस्काउंट आपको मिलेगा 4167106777, 4167106777 पर आप कर सकते हैं। लिए चलेंगे न्यूज़ की तरफ, जो पेश करें जनाब ज़ुबैरुद्दीन साहब।
7: You're listening to CMR FM 101.3।
8: न्यूज़ के लिए हमें तावन दिया है अंजुम कुरैशी साहबा ने।
9: खुदा न करे अगर आपका कार एक्सीडेंट हो गया और आप कानूनी मदद लेना चाहते हैं तो ना सिर्फ हम आपके हक का जायज ज्यादा से ज्यादा पैसा लेकर दिलवाते हैं बल्कि अपनी फीस भी आपका क्लेम दिलवाने के बाद ही लेते हैं। और मैं आपकी अपनी अंजुम कुरैशी आपकी अपनी जबान बोलती हूँ और हमारे पर्सनल इंजरी लॉयर्स की टीम आपके क्लेम को प्रोफेशनली हैंडल करते हैं। और अगर अपने क्लेम के सिलसिले में आप हमारे लॉयर के साथ मीटिंग करना चाहते हैं तो हमारी कंसल्टेंसी बिल्कुल फ्री है। आज ही मुझे कॉल करें, आपके कार एक्सीडेंट केस में आपका इन्फॉर्मेशन लेना आपका हक है। 416-570-0157, 416-570-0157।
2: न्यूज के लिए तावन देते हैं आइकॉन इवेंट स्पेस 6887 डिक्सी रोड मिसागा डिक्सी डेयरी के इंटरसेक्शन 3 खूबसूरत हाल 1200 तक अफराद की गुंजाइश एम्पल पार्किंग अपने खुशी के लम्हात को यादगार बनाइए आइकॉन इवेंट स्पेस के साथ मजीद मालूमात के लिए कॉल कीजिए 4374252500 इट्स 4374252500 आइकॉन इवेंट स्पेस
8: न्यूज के लिए दावत दिया है टीम भट्टी रियल स्टेट फॉर ऑल योर रियल स्टेट नीड्स कॉल तलहा भट्टी 6472957861 6472957861
10: बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम